राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

रुपोट किट बनकर मेरा बाल बच्चा पुखनार मर जाए बुदुशाने क्या नहीं जिन्हें हुक्म दिता है वो अपनी रक्षा करेगा ये तेरे मन की कमजोरी की रक्षा करेगी बुदुशाए तो गन्ना बुद्धू शाह दिया सुन सुन गन्ना सिख धर्म बिगाड़ा बच आके मुश्किल नाल उठाया उसनू और मुंह च पानी पा के कहता सतगुरु की किया मैनू अंदर कैद पता है मेरा बाल बच्चा सब रुके मर्जी कौन खिलाती जाए कोठी बंद एक दिन बीतिया कुछ नहीं खादा पी दूजा दिन होया बुद्धू शाह ने किया सजे प्रसाद तक नहीं नहीं मैनू भुख नहीं तीजा दिन होया सोचे लगा मैंने बाल बच्चे तो भुख न मर गए हो गए तू भुखा क्यों मरने अगो सही भुख बड़ी राज है भुख बड़ी परबल है फरीद ने कहा मौतों भुख मिली इंसान भुख पीछे कई बार बड़िया बड़िया गलतियां कर माने की लिखा दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सख्त वाल जमदूत एक दुख रोग लगे तन खाए व्याज न होने का दुख अर्थात पानी छकल लग गया नौ महीने भी थी समा नौ बीत जन समय का पता ही नहीं लगता पला दिया घड़िया घड़िया ने सके चिंता दे मिनटा के घंटे घंटिया ने पैर पैर के दिन दिन के हफ्ते हफ्तिया ने महीने महीनिया ने साल साल सदिया सदिया के युग बीते जा रहे युग अखी केरे माट के पल पल गई वे हाए पल पल करके के आयु बीती पता नहीं मन जंजाल ना छोड़ी जम दिया जब दिते पैर पैर के घड़िया अगर कहते आव घटे पर नौ महीने भाई सज्जा तेरे पौ पद मोकले हैं अज नौ महीने बीत गए हैं तू जा सकते भाई तू जाओ किधर जाओ बाल बच्चा तो भुखना मर गया हूं कोई आसरा नहीं किड़े पास जाओ ने कहा जी मेरे को गुरु को गुरु को गुरु शाह आओ तो मेरा कोई बाल बच्चा बचे नहीं तो जी कोई बच भी गया होगा तो उन्होंने भी रोक के मरांगा कि गुरु का नाम भुल के नहीं देना लुकी बंदी छोड़ के दे चंगा बंदी छोड़ गुरु नौ महीने की कैद दे मैं भी जाना सही गुरु शाह ने कहा तो भाई सज्जा ये भी कोई राज है तू नहीं समझ मच्छी की जाने सागर के डा बच पानी चलती हुई मच्छी को सागर का अंत नहीं तू करे आओ आज फिर पढ़िए अभी भी कह नहीं गुरु अपनी दलील से परखण लग जाए गुरु की सिखी को अपने ख्याल पर अरे गलत पानी लिखे है सारे रुख से थोड़ी

के दरवाजे की खड़ोता होया बिट बिट पिया तक हसन पही निगाह दे नाल वेख ले भगवान ने किया है दरबान ओदा नाम भी पूछ लेना सी दरबान ने किया नाम भी दस क्या नाम है द्वार खड़ा तुझ गुरू बन छो देख रहे हो वसुधा अब रहा पूछ तू दी।

हमारी जेहबा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जबे आरिया हर तुम बड अगम अथाह।

निर्मल निर्मल सूर्या, निर्मल निर्मल सूर्या, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ तेरो थान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ तेरो थान, तेरो थान।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा इस शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नू असी जो खो चुके हैं, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है? हाउ मैनी? इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण की है जिथे वो आखते हैं असी मंजिल दे करीब ते की जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुन वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहते यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नू ए नहीं पता कि वह जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मतलब कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानू ए पता नहीं तुसीं किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ए आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे तो कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

संत ने अपनी हरता के पारावार आप कराए सकती फिर आप कराए मार एक निकली चीरी एक सियार आप कराए करे आप होगा सुख रिपकार नानक करना जिनकी।

भए प्रसन्न गुरुदेवा। तिन प्रभ जब आए मोह दिया तब हम जन्म कलू में लिया। कयो प्रभु।

साहब सत्संग जीओ, दुनिया विच बड़े बड़े खुशी दे मौके हैं और तरह तरह नाल दुनिया अपने मन की खुशी जाहिर करती है। इस दुनिया विच जेड़े भगत लोग हैं, जेड़े रब दे बन जाते हैं, जेड़े परमात्मा दे चरण अपने मन विच वसा लैंदे हन, जिन्हां नूं अपना सच्चा पति रब लगन लग पैंदा है। एका पिर सखियां सब पिर की, खसम ते ओ आप है असी ते सब दासियां हां। कबीर साहब कह रहे हन, मैं किहो जिहा दूल्हा मैनू पाया, मैनू रब वर्गा दूल्हा मिलिया है। राम राय सो दूलो पायो अस वड भाग हमारा। बराती मेरे नाल कौन हन, मेरे पंजो तत। रब ने मेरे ते कृपा कीती है, मेरे मन रूपी सेजा ते आके चरण पाए हन, मेरे ग्रह आए राजा राम पथारा। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस तेती करोड़ देवता इस गल दा साक्षी है। की साक्षी है, कह कबीर मोए ब्याह चले हैं। पुरख एक भगवान, पुरख एक है, पुरख ओ वाहिगुरु आप है, असी ते सब उसदियां दासियां हां। तू ठाकरो बैरागरो मैं जे ही कण चेरी, मेरे वर्गियां लखां दासियां करोड़ां दासियां तेरे दरवाजे ते चाड़ू पईयां दिंदियां हन। मैं जे ही घन चेरी राम, तू सागरो रत नागरो, हौ सार ना जाना तेरी राम, सार ना जाना तू वडदाना, कर महरमत साई कृपा कीजे सा मत दीजे, आठ पहर तुद त्याई। ऐसी मेनू मत दवो, ऐसी मेरे ते कृपा करो कि मैं आप जिनू अठो पहर हर घड़ी तुहानू जपा वाहिगुरु। ते जिन्ना रे वाहिगुरु नू जपया उन्ना दी जिंदगी दा नाम ही सुख बन जांदा है, ते जेड़े रब तो बिना हन ओह दुखी हन, ते जेड़े रब वाले हन जेड़ियां खसम वालियां हन ओह सुखी हन। ते गुरु कृपा करे ये सुहाग तुहाडे जपण वालियां दा बणिया रहे।

फिर अजरीफ शरीफ गए अजबे फरीद साहब, गुरु नानक साहब ही पाक पटन गुरु नानक साहब नू फरीद साहब मिले, आपो च नी गल्ला होई इतादी ते कलाम उन्हां दे गुरु ग्रंथ साहब च आए। जदो मुर्शिद तारन वास्ते मुर्शिद ने कहा अच्छा तू आ गया, बड़े प्यार नाल सेवा कीती और सेवा इको ही लगी कि तू इशनान ही करा, लकड़ा सवेरे बालनिया अग बाल के मुर्शिद नु इशनान करा उन्हें फिर हुजरे च जाना इबादत वास्ते। जिस तरह गुरु अमरदास जी ने 12 साल लाए ब्यासा तो जल लिया गुरु अंगद साहब नु इशनान कराया, गुरु 36 साल दा और चेला 62 साल दा, फिर एक गुरु तारन वास्ते इनी सेवा। जे डिग भी पे खड्डी विच जलाई ने कहा, जलाई ने पुछया ए कौन है, जलाई कहन लगी अमरू न थावा जिन्हों किते था ही नहीं, पर गुरु अमरदास जी कहन लगे मैं ते मुर्शिद वाला ते था वाला कमलिये तेरा ही कोई नहीं। मैं बेनती करा 12 साल दी भगती बहुत है, पर मां ने किन्ने साल लवाए पक्या करन वास्ते। स्टूडेंट एक सबक नू रोजाना रिपीट करदा है पर मास्टर कहिंदा फेर पढ़, हैरान हुंदा क्यों पढ़ाउंदा है, मास्टर दा मतलब हुंदा है जदों किते परचा दवे इम्तिहान होए फर्स्ट आवे। तो अज फरीद साहब जी दा अखीरला समा सी, इन्हां 12 साल होर लाए। अज मुर्शिद ने भी ऐसी कला वरताई के मीह ते छखण ते लकड़ा भी भिज गई और डब्बी भी कोई नहीं, ते फरीद चात मारी विंडो खोल के बारी खोल के गलियां विच चिकड़ा ते मीह वर रहा, कहिंदा इक्को ही कमली आ भेजेगी फरीद।

संसर्ग हो चुका है, तो मैं क्या कहा जैसे कि संसार जल जीवन बढ़ता है।